अगर आपके बाद ये जिंदगी में केकरो आगमन हुई ना तो उम्र जरूरत नहीं, बाध्यता रही। हाँ, बाध्यता रही।

अब तुहार बेन ये मोटू कैसी तड़की, ये सास कैसी चली, आ तू मोरला सब कुछ रलो, मोरला किस्मत रलो, तर हाँ शायद तू मोर किस्मत मनी रलो।

0: पालिका एक कञ्चनपुर जाने बाटो फुरिकाओ बर्दिया प्रोपराइटर हेमराज आचार्य सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98482974774
1: अशोक साल त ढुक्क नारे बत्ती
2: हा त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्हिन्दो लक्तिर हटबरा पानी बस्दा बेर अस्ति चिम कहाँ रहेछ गए त सोचो त लट्ठी चिपकम घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाए लाग
1: हाँ ब्यालम से सुरक्षित नारे बट्टी
2: हाँ हो बदा
3: बर्खक ब्यालम बहिया ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचत ला पहिले हाँ सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरहल बाकल से सावधान रहिए एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यान हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश

0: जुन्ली मार्सी र स्थानीय अनदी चामल, घरमै तयार गरिएको शुद्ध घिउ र मह, रैथाने बासमादार, काला नमक चामल लगायत अन्य विभिन्न स्थानीय कृषि उपजहरू। थप जानकारीका लागि प्रोपराइटर राजा रिजाल 98699177777, घर संसार स्टोर, रेडियो टाइगर भएको भवन, ठाकुर बाबा नगरपालिका 1, भुरीगाउँ बर्दिया।
1: नमस्कार ओ राम राम। हरेक महिना के 1 गते ओ 15 गते प्रसारण मिटी ऐलक रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि। यह भदौ 15 गते संध्या के 7 बजे ओ पुनः प्रसारण 16 गते बिहान के 7 बजे। प्राविधिक समस्या कारण प्रसारण करे नई शैक्षिक वर्ष आज भदौ 16 गते संध्या के 7 बजे ओ 17 गते बिहान के 7 बजे रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि लयका आयल बाटी।
2: कृषि सम्बन्धी जानकारी, सफल कृषकका कुरा, के हुन्छ समस्या, के हुन्छ विकल्प। कृषि प्रधान मुलुकमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी। कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि हरेक महिनाको 1 र 15 गते समय साँझ 7 बजे र बिहान पुनः प्रसारण 7 बजे रेडियो टाइगर FM सुन्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि।
3: तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 MHz गर्जन त सधैँ बाप चाहिँ।

0: राम राम ओ नमस्कार रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा टीकाराम चौधरी सँग आरती चौधरी स्वागत बा। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र के समन्वयमा रेडियो टाइगर बर्दिया सिन्हा उत्पादन करल कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा प्रविधि मसिना सम्बन्धित मेरमेरिक जानकारी कृषक कनेक्ट पुगेक लाग ओ कृषक हुक्र कर्तीहरूलाई खेती प्रणालीमा ऐना समस्या प्रश्न जिज्ञासा कृषक हुकन के आशा अपेक्षा गुनासो सुझाव सुनकेन मेरमेरिक जानकारी देना उद्देश्य से यी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हो।
1: यी कार्यक्रम महिनामा दुई चो हरेक महिना 1 गते ओ 15 गते सन्ध्याके 7 बजे रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज बर्दिया ओस्तक अनलाइनमा टाइगर खबर .com ओ मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो मसिफी सुन्ने सेक्जाइट
0: ओस्तक रेडियो गेरुवा एफएम 90.7 मेगाहर्ज शान्ति बजार ओ अनलाइनमा मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो मसिफी सुन्न सिक्ने माथि कार्यक्रम के फेडोस र प्रसारण बिहान के 7 बजे के सुन्न सिक्ने बाँकी उष्टनाक 1.5/22 कार्यक्रम सुन्न सिक्ने बाँकी कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र ओ कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ हुकन सेना कृषक हुकन के आशा अपेक्षा ओ गुनासो तथा सुझाव के सम्बोधन एवं कृषि क्षेत्रका मेरमेरित जानकारी प्रसारण गरिने बाँकी
1: कृषि तथा पशुपन्छीगणकै उत्पादन वृद्धि गरिकन कृषक समुदायकै आय आर्जन ओ जीवन स्तर उठाके देशभरके कृषि क्षेत्रकै बेहोर उत्पादन बढाएकलाई अनुसन्धान मसी विकसित प्राविधिक प्रकाशन प्रसारण ओ अभिलेखीकरण कैकर संचार माध्यमकै प्रयोग मसले प्रसार प्रसार कर्ती कृषकको सरोकार अलङ्कन पुगैना काम यी राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रकै मुख्य उद्देश्य रहलबा।
0: नेपाल कृषि प्रधान देश हो जहाँ ग्रामीण समुदाय के मुख्य आय आर्जन के स्रोत कृषि पेशा रहलबा। एक ओर ग्रामीण आय आर्जन के स्रोत कृषि क्षेत्र हुइलको कृषि सम्बन्धी प्रविधि ज्ञान सहज सरल तरिका से न पुगैना परम्परागत प्रचार प्रसार के माध्यम अथवा प्रभावकारी नीति ठिलक अवस्थामा नवीनतम प्रविधि मसिन प्रचार प्रसार करकलाग आधुनिक तरिका से न हाली हो झट्ट सूचना पुगैना सूचना प्रविधि हो संचार के माध्यम एकदम उपयोगी हुना देख पर्ना हुइलको से रेडियो टाइगर के सहकार्यमा यी कार्यक्रम प्रसारण हुइतिबा।
1: सूचना और संचार प्रविधि से कृषक हुन के आधुनिक खेती प्रणाली में निरवस्थित समय में आवश्यक सूचना ज्ञान और सीप के पहुंच कराके उत्पादन बढ़ेना सघैना करना और समग्र कृषि विकास में खास भूमिका निर्वाह करलबा। कृषक के खेती बारी में सदा दिन जैसी कुछ न कुछ प्राविधिक समस्या देखा पड़ना हुईलक और से समाधान

0: ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर वर्दिया की आवाज, वॉइस ऑफ वर्दिया, वॉइस ऑफ वर्दिया।
1: तुम्हारा शादी के बाद भी ऐसे ही बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं
2: है। अरे बाप, आज तो शाहरुख खान निकल रहा
1: है। सच्ची?

सब सोलासी को बनाता रहना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए खास बात खुदा